0: है पहल।
1: ओ यार ना आता दस दे।
0: स्वीट महल स्वीट महल स्वीट महल।
2: टॉप क्वालिटी आला साफ सुथरा वेज ते नॉन वेज खाना। 100 to 1000 बंदिया दी केटरिंग ली पूरा इंतजाम। स्वीट महल दे नवे ते 300 केटरिंग ट्रक विच। स्वीट महल रेस्टोरेंट इन रेक्सडेल 416-679-9991।
0: स्वीट महल।
3: इलेक्ट्रॉनिक्स दी मार्केट दे विच मशहूर नाम टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स। इत्थों तुसी हर कंपनी दे हर साइज दा टेलीविजन, फ्रिज, स्टोव, डिशवाशर, लॉन्ड्री ली वाशर एंड ड्रायर दे नाल अगर तुसी अपने घर दे विच होम थिएटर सिस्टम सेटअप करना है या फिर घर दी किचन दे विच आलीशान अप्लायंसेस लगवाना चाहुंदे हो, डिलीवरी ऑन टाइम लैण लई चेती रखो। टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स 16 इंटरमल ड्राइव एट एयरपोर्ट रोड इन ब्रैम्पटन। नंबर 905-799-0045 9057990045। Top Choice Electronics।
4: HK Movers, home, offices, apartments and delivery, big or small, we move it all.
5: HK Movers,
4: local and long distance, we also ship cars, Kailor transport and moving services.
5: For service with a smile, give us a call.
4: Call Mr. Harminder 416-524-6704.
5: 416-524-6704.
4: Visit 140 Advance Boulevard, Unit Number 10, Brampton.
6: Long distance moving specialist,
4: HK Movers.
7: ਘਰ ਦਾ ਐਕਸਟੀਰੀਅਰ ਹੋਵੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤੇ ਲੁੱਕ ਹੋਵੇ ਕਮਾਲ ਦੀ, ਇਹ ਹੈ ਕਮਾਲ ਓਰਕਲ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਦੀ। ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਰਕ, ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਸਰਵਿਸ, ਬਿਲਡ ਟੂ ਲਾਸਟ। ਮੈਨਸੂਰੀ ਤੇ ਸਟੋਨ ਵਰਕ, ਇੰਟਰਲਾਕਿੰਗ ਫੈਂਸਿੰਗ, ਪੈਰੀਓ, ਰਿਟੇਨਿੰਗ ਵਾਲਸ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਲੈਂਡਸਕੇਪਿੰਗ, ਹਾਰਡਸਕੇਪਿੰਗ, ਤੁਹਾਡੇ ਐਕਸਟੀਰੀਅਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਕੰਪਲੀਟ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਓਰਕਲ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ। ਰਿਪੇਅਰਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੰਪਲੀਟ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰਮੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਓਰਕਲ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਮ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਜੀ। ਅੱਜ ਹੀ ਕਾਲ ਕਰੋ 1-888-8956 या 416-474-6836। Oracle Foundations, lasting results.
8: You're listening to CNN Toronto, Chawla News Network Toronto. You're listening to CNN Toronto, Chawla News Network Toronto.

शहर दी आवाज दिला दी पुकार योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फेर तो एक बार तुहाडा अपना CJMR 1320 CJMR 1320

0: राजनीति का अच्छे अच्छों को चूज कर गुठलियां फेंक दी है।
1: पिंड चोटियां चर्चा दे विच पहले तेरा वे राजनीति कुछ लोका ने भी पालिया खेरा वे पंडता खाली कितड़ बहनू रे लाई आउणगियां हुण नी जज

छड़ी न दिखाओ, गलत है सब पर लगे है सही, आंखें बंद कर करेगी तो नहीं, जो भी मैं बोलूंगा करेगी तो वही, जहां तूने छुआ मुझे वहां तो गई।

शहर दी आवाज दिला दी पुकार योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फेर तो एक बार तुहाडा अपना CJMR 1320 CJMR 1320

0: शहर दी आवाज दिला दी पुकार योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फिर तो एक बार तुहाड़ा अपना CJMR 1320 CJMR 1320
1: संदीप एक बारी फतेह

तारीफ जो हम कर रहे हैं, बस ये कहेंगे कि दुनिया को जीना सिखाने वाले तुम पे मर रहे हैं।

वफा तो बेकदर यार बोले दे खबर, मैं दुनिया से बेखबर, ए खुदा मुझे दे सबर, तू साथ है तो किसका डर, वो देता हर दिल में घर, तो क्यों इतना बेसबर। जिंदगी खेल नहीं ये सिर्फ एक तमाशा है, कितनों को जेल हुई जुर्म में इजाफा है, हम आना के देर हुई इस कलम से वादा है।

नहीं, ये सिर्फ एक तमाशा है, देखी दोपहर नहीं, रातों का राजा मैं, हमारा ये देर हुई पर अपनों से वादा है, इस जंगल को शेर नहीं अंधेरा सिखाता है।

0: ऐसे महफूज है मेरा सवाल किसी का उरूज
1: सर बेअसर बावफा तो बेगदर यार बोले दे खबर मैं दुनिया से बेखबर ऐ खुदा मुझे दे सबर तू साथ है तो किसका डर वो देता हर दिल में घर तो क्यों इतना बेसबर हर जहर बेअसर बावफा तो बेगदर यार बोले दे खबर मैं दुनिया से बेखबर ऐ खुदा मुझे दे सबर तू साथ है तो किसका डर वो देता हर दिल में घर तो क्यों इतना बेसबर।

0: adrenalină. Şeher din avaz, Diladi Pukar. Your city, your voice, your radio star. A gaya fer to ek var. Tuhada apna CJMR 1320. CJMR 1320.
1: मैं सिंगल सिंगल हैप्पी सो मन मिंगल को न्या होना

0: ना तुम जो मदिरा से बड़ो मैं खाना लगती हो।
1: Your home for culture, community, and unity. Here on CJMR 1320.

ज्यादा ना सुना कर उनकी, तू ज्यादा ना सुना कर उनकी, बस अपने ही किया कर मन की, बस अपने ही किया कर मन की। देख तुझे जलती है जिनकी, हाँ देख तुझे जलती है जिनकी, क्यों फिक्र करें, क्यों फिक्र करें फिर तू उनकी।

0: राजनीति का अच्छे अच्छों को चूस कर गुठलियां फेंकती है।
1: पिंड चोटियां चर्चा दे विच पहले तेरा वे राजनीति कुछ लोका ने भी पालिया खेरा वे पंडता खाली कितड़ बहनू रे लाई आउणगियां हुण नी जज जमानत दिंदा

स्वीट महल वालों का ब्रांड न्यू प्रेसिडेंट कन्वेंशन सेंटर 100 तो लेके 700 की कैपेसिटी, डिलीशियस फूड, खुली डुली पार्किंग, ब्यूटीफुल एम्बियंस, मीटिंग, ब्याह, बर्थडे पार्टी, एनिवर्सरी होवे या कोई भी फंक्शन, भुलियो ना स्वीट महल वालों का प्रेसिडेंट कन्वेंशन सेंटर, 1133 क्रेडिट स्टोन रोड, वॉन। फॉर बुकिंग कॉल 416-433

0: डिवेलपमेंट अथारिटी यानी गमांडा दे दफ्तर च वड्डे पद्धर ते छापेमारी कीती है। ईडी दी इस अचानक कारवाई दे नाल प्रशासनिक गलियारें दे विच भूचाल आ गया। केंद्रीय एजेंसी दे अधिकारियां ने गमांडा दफ्तर दियां घट्टो घट्ट तीन मंजिलां नूं सील कर दिता ते उत्थे मौजूद चोटी दे अधिकारियां दे मोबाइल फोन तक अपने कब्जे च लै ले। इस छापेमारी दौरान ईडी ने रेमीगेट मामले दे नाल नाल निजी बिल्डरां नूं गैर कानूनी ढंग नाल जमीन दी वरतों बदलन दियां मंजूरियां देण दे रिकार्ड वी जब्त कीते ने। सूत्रां दे मुताबक गमांडा दे सीनियर अधिकारियां जिन्हां विच स्टेट अफसर, वधीक मुख प्रशासक अते मुख इंजीनियर शामल ने, उन्हां नूं हाउसिंग सकत्तर दे कमरे च बुलाया गया जिथे उन्हां तों लगातार पुछगिछ कीती गई है। पंजाब ते हरियाणा हाईकोर्ट ने सरकारी मुलाजमां ते पेंशनरां दी पेंडिंग महंगाई भत्ते दे भुगतान संबंधी पुराने हुक्मां दी तलीम ना करन दा गंभीर नोटिस लैंदिया पंजाब दे मुख सकत्तर नूं अदालत च निजी तौर ते हाजर होण दा निर्देश दित्ता है। अदालत ने प्राइम फेसिया दे विच पाया है कि सूबा सरकार अदालती हुक्मां दी पालना करन च नाकाम रही है। मुख जस्टिस अश्विनी कुमार मिश्रा ते जस्टिस रोहित कपूर दी अदालत डिवीजन बैंच ने यह हुक्म 3 अगस्त उस फैसले दी अनदेखी दे नाल जुड़ियां अर्जियां ते सुनवाई करदिया जारी कीते ने, जिस विच पंजाब सरकार ते पंजाब स्टेट पावर कारपोरेशन लिमिटेड केंद्र सरकार दियां दरां दे मुताबक सारी बकाया डीए डीआर दियां किश्तां जारी करन दा आर्डर दिता गया सी। सुनवाई दी शुरुआत विच बैंच ने पटिशनरां दियां दलीलां वल ध्यान दवाया, जिस विच उन्हां ने कहा कि सूबा सरकार अजिहा प्रभाव देण दी कोशिश कर रही है जिवें दोवां धिरां विचाले कोई समझौता हो गया होवे, जदकि पटिशनर सिर्फ हाईकोर्ट दे फैसले नूं लागू करवाण लई अधिकारियां दे नाल संपर्क कर रहे ने।
1: खबरां दे इस बुलेटिन दे स्पॉन्सर ने रीमैक्स गोल्ड रियल्टी दे अर्ज चावला। घर सेल करना चाहुंदे हो या फिर बाय या फिर कमर्शियल प्रॉपर्टी च इन्वेस्ट करना चाहते हो, कॉल अर्श चावला 416-303-1515 416-303-1515।
0: पंजाब च बीते 2.5 दहाकियां दौरान नशा तस्करी दे तकरीबन 2,46,000 केस दर्ज होए ने। पिछले कुछ वर्यां च पंजाब एनडीपीएस केसां दे मामले च समुचे देश दूजे या तीजे नंबर ते रहा है। पंजाब च एनडीपीएस दे केसां दा आंकड़ा सिखर छोह रहा है। उधर ओवरडोज च मौतां दे नाल वड्डी कमी नहीं आई है, पर जदों पंजाब च चोणां बरूहां ते ने हर एक सियासी धिर नशे दे मुद्दे नूं छाल रही है। सत्ताधारी धिर वी युद्ध नशे विरोधी प्राप्ति दा गुणगान कर रही है, जदकि विरोधी धिर नशयां दे नाल हो रही मौतां दा आंकड़ा दिखा के घेराबंदी कर रही ने। अजिहा चौथी वार होवेगा जद विधानसभा चोणां च नशयां दा मुद्दा भारी रहेगा। जनवरी 2002 तो लैके हुण तक सूबे च इस एक्ट दे तहत 2,45,995 केस दर्ज हो चुके ने। अमृतसर दी कांग्रेस सरकार दे दौरान इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट दे चेयरमैन रहे दिनेश बस्सी दे बेटे वंश बस्सी ते उसके साथी अमित बजाज दे खिलाफ थाना सिविल लाइन पुलिस ने धोखाधड़ी दे दोष च केस दर्ज कीता है। दोनों दे उपर जिला कचहरी दे सामने केनाल कलोनी निवासी कंवरदीप सिंह तो 50 लाख रूपये की ठगी मारन दे दोष ने। पुलिस दे मुताबक मामले च दोषियां दी गिरफ्तारी दे लई छापेमारी कीती जा रही है। थाना इंचार्ज मोहित कुमार ने दस्सिया कि शिकायतकर्ता कंवरदीप सिंह दी शिकायत दे आधार ते दोवां दोषियां दे खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। पंजाब विधानसभा च सचिन पायलट दी एंट्री दे नाल ही मिशन यूथ स्टार्ट हो गया। सचिन पायलट ने विधानसभा टिकट दे लई नवा फार्मूला जारी कर दिता है। पायलट दे फार्मूले दे हिसाब दे नाल सर्वे यूथ लीडर्स नूं सीनियर लीडर्स दे मुकाबले 4% दी वेटेज दित्ती जा रही है। अजिहे च कई वड्डे नेतावां दे टिकट भी कट सकदे ने। टिकट फाइनल करन तों पहलां हाईकमान दी टीम बकायदा टॉप 3 च रहण वाले नेतावां दा इंटरव्यू भी लवेगा। हाईकमान इस बार उन्हां नेतावां नूं चोन मैदान च उतारन दी तैयारी च है जो फील्ड एक्टिव ने ते पब्लिक तों कनैक्ट ने। इस लई सचिन पायलट दी टीम ने नेतावां दे सोशल मीडिया अकाउंट भी खंगालने शुरू कर दित्ते है। टिकट दे दावेदारां नूं बकायदा एक फार्म दिता गया जिदे विच ओह अपनी एक्टिविटी ते पब्लिक कनैक्ट दे बारे च पूरी जानकारी देणगे। पायलट दे नवे फार्मूले दे नाल पंजाब कांग्रेस नूं गुटबाजी कारण होण वाले नुकसान नूं घट करन दे प्रयोग दे तौर ते देखा जा रहा है। पार्टी हाईकमान ने साफ कर दिता है कि टॉप 3 च रहण वाले लीडर दे विचों ही पार्टी एक नूं टिकट देवेगी। इस नाल ही खबरां दा बुलेटिन खत्म हुंदा है। इजाजत दिओ, धन्नवाद।
2: You're listening to CNN Toronto, Chawla News Network Toronto.
3: HK Movers, home, offices, apartments and delivery, big or small, we move it all.
4: HK Movers,
3: local and long distance,
5: we also ship cars,
3: Kailer Transport and moving services.
4: For service with a smile, give us a call.
3: Call Mr. Harminder 416-524-6704.
4: 416-524-6704.
3: Visit 140 Advance Boulevard, Unit Number 10, Brampton.
6: Long distance moving specialist,
3: HK Movers.
7: HK Movers.
8: Agar thode
6: ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੀਕੇਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਨਾਮ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਪਿਛਲੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਪਰਮੰਨਿਆ ਨਾਮ ਬੈਸਟ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਤਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ 416-451-4565। 25 ਸਾਲ ਦੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾਲ ਵਾਰੰਟੀ। 416-451-4565 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੀਕੇਜ ਤੋਂ ਪਾਓ ਛੁਟਕਾਰਾ।
7: ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਢੇਰ ਸਾਰੇ ਡੇਲੀ ਡਾਲਰ ਕਮਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਸੂਚਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੈ। ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਅਜੈਬ ਸਿੰਘ ਸਹੋਤਾ, ਜੋ ਮਿਲਟਨ, ਕੈਲਡਨ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਮਾਲਟਨ, ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਵਿੱਚੋਂ ਘਰੋਂ ਪਿਕਅਪ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਵਾਪਸੀ ਤੇ ਪੇਮੈਂਟ ਡੇਲੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। 7 ਡੇਜ਼ ਕੰਮ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰੋ ਅਜੈਬ ਸਿੰਘ ਸਹੋਤਾ 416-561-8882 416-561-8882।
8: ਇਹ ਹੈ ਟਾਟਾ ਆਟੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ। ਇੱਥੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰ, ਵੈਨ, ਟਰੱਕ ਅਤੇ ਐਕਸਯੂਵੀ ਦੇ ਸਟਾਰਟਰ, ਅਲਟਰਨੇਟਰ ਅਤੇ ਜਨਰੇਟਰ ਤੁਸੀਂ ਰੀਬਿਲਡ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਟਾਟਾ ਆਟੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ, ਸਟਾਰਟਰ, ਅਲਟਰਨੇਟਰ, ਜਨਰੇਟਰ ਰੀਬਿਲਡ ਕਰਨ ਦਾ ਚੈਂਪੀਅਨ। ਮਿਲੋ ਗੜ ਸ਼ੰਕਰ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਸਰਦਾਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ, 38 ਐਡੀਸਟੋਨ ਐਵਨਿਊ ਇਨ ਨਾਰਥ ਯਾਰਕ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰੋ 416-740-5555 416-740-5555। ਟਾਟਾ ਆਟੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ।
9: ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਬਣਾਓ ਤੇ ਰੁੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਾਓ। ਆਪਣਿਆਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਤਾਜ਼ੇ ਸਵਾਦਲੇ ਜ਼ਾਇਕੇਦਾਰ ਫੂਡ ਦਾ ਲੁਤਫ ਉਠਾਓ। ਲਾਲੀ ਸਵੀਟ ਐਂਡ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਆਓ। ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਸਵਾਦਲੀਆਂ ਮਠਿਆਈਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਾਇਕੇਦਾਰ ਫੂਡ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਲਾਲੀ ਸਵੀਟਸ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡਾਈਨ ਇਨ ਜਾਂ ਟੇਕ ਆਊਟ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਗ੍ਰੇਟ ਫੂਡ, ਬੈਸਟ ਸਰਵਿਸ ਲਈ ਲਾਲੀ ਸਵੀਟਸ ਐਂਡ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਪਹੁੰਚੋ। 499 ਰੇ ਲੋਸਨ ਬੁਲੇਵਾਰਡ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ। ਕਾਲ 905-450-6464 905-450-6464।
10: ਲਾਲੀ ਸਵੀਟ ਐਂਡ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ, ਲਾਲੀ ਸਵੀਟ ਐਂਡ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ।
11: ਰਿਟਸ ਫਰਨੀਚਰ ਦਾ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਜ਼ਰਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ।
12: ਸਸਤਾ

शहर दी आवाज, दिला दी पुकार, योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फिर तो एक बार तुहाड़ा अपना CJMR 1320 CJMR 1320।

0: where cultures connect. CJMR 1320, the voice of the city.
1: जब तू साथ नहीं होती, तड़पता मेरा दिल है, मेरी रग रग में लहू के साथ साथ तू भी शामिल है।

शहर दी आवाज दिला दी पुकार योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फेर तो एक बार तुहाड़ा अपना CJMR 1320 CJMR 1320

शहर दी आवाज दिला दी पुकार योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फिर तो एक बार तुहाड़ा अपना CJMR 1320 CJMR 1320

0: ओ भाई बीटी मत दे, लाइन दे। अंडा नॉनवेज नहीं होता और बियर दारू नहीं होती।
1: योर होम फॉर कम्युनिटी CJMR 1320।

शहर दी आवाज दिला दी पुकार योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फेर तो एक बार तुहाड़ा अपना CJMR 1320 CJMR 1320

शहर दी आवाज दिला दी पुकार योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फिर तो एक बार तुहाडा अपना CJMR 1320 CJMR 1320

शहर दी आवाज दिला दी पुकार योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फेर तो एक बार तुहाड़ा अपना CJMR 1320 CJMR 1320

0: पास हो तुम, मेरा नाज हो तुम, रब से मांगी मेरी वो अरदास हो तुम, कैसे छोड़ जाऊं मैं साथ तुम्हारा, खुदा से भी ज्यादा खास हो तुम।
1: The voice for your community, the voice of the city, CJMR 1320.

शहर दी आवाज दिला दी पुकार योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फिर तो एक बार तुहाडा अपना

0: अभी सुन रहे हो चावला न्यूज नेटवर्क टोरंटो CNN टोरंटो।
1: इंतजार हुण खत्म होया। रीमैक्स गोल्ड रियल्टी दे गौडी खुमान लेके आए हन साउथ कैल्डन विच प्रीमियम रिटेल अते ऑफिस स्पेस खरीदण दा एक होर सुनहरा मौका। पेश है कैल्डन कमर्शियल सेंटर हाईवे 10 अते हाईवे 410 दे प्राइम इंटरसेक्शन ते 15 एकड़ विच बन रहा एक नवा कमर्शियल डेवलपमेंट। रिटेल अते ऑफिस यूनिट्स हुण सेल लई अवेलेबल हन। कैल्डन दी इस नवी कमर्शियल डेस्टिनेशन विच अपनी स्पेस अज ही पक्की करो। अपनी यूनिट अज ही बुक करन लई साडी टीम नाल कॉन्टैक्ट करो।
0: जीना या मरना इंसान दे हाथ नहीं, परंतु इस संसार तो तुर गए प्राणी दा उस दियां धार्मिक रौ रीतां दे नाल उस नूं विदा करना साडे वस है। अपनी संस्कृति अपनी धार्मिक रौ रीतां मुताबक अंतम रस्मां वेले याद रखो। रैक्सडेल दे विच लोटस फ्यूनरल होम जिथे अंतम दर्शना तो लैके दाह संस्कार दियां रस्मां इको ही छत थले हुंदियां हन। लोटस फ्यूनरल होम दा सारा स्टाफ तुहाडी भाषा पंजाबी हिंदी भी बोलदा है। वधेरे जानकारी लई कॉल करो सरदार हरमिंदर सिंह हंसी 647-547-8188 6475478188 Lotus Funeral Home।
2: HK Movers, home, offices, apartments and delivery, big or small, we move it all.
3: HK Movers,
2: local and long distance, we also ship cars, Kailor Transport and moving services.
3: For service with a smile, give us a call.
2: Call Mr. Harminder 416-524-6704.
3: 416-524-6704 pe.
2: Visit 140 Advance Boulevard, Unit Number 10, Brampton.
4: Long distance moving specialist,
2: HK Movers.
5: HK Movers.
6: शहर दी आवाज, दिला दी पुकार, योर सिटी, योर वॉइस, योर रेडियो स्टार, आ गया फेर तो एक बार, तुहाड़ा अपना CJMR 1320